किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत मशाल फिल्म से साथियों अभी आपने सुना। 1984 रिलीज ये फिल्म। हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था और जावेद अख्तर की लिखी रचना थी।

इस समय श्रोता साथी सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। प्रातः के 5:35 हुए हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। साथियों, भोर सुहानी हो चुकी है, सूर्य की किरणें सज चुकी हैं और हम भी तैयार हैं अपने सपनों को, जो सपने हमने बुने हैं उनको पूरा करने के लिए। आइए हम सब बढ़े अपने सपने पूरा करने के लिए, जो हम सब ने बड़े ही चाव से बुने हैं।

0: सपने
1: मुकेश की आवाज़ से सजा। ये गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ से सजा। आनंद ये था फिल्म का नाम जिसका ये गीत था। 1971 रिलीज ये फिल्म। सलील चौधरी का संगीत था, गुलजार की लिखी रचना। और अब जिंदगी का सबक देता, संदेश देता ये तराना।

जिंदगी का सुंदर संदेश देता ये गीत आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना, फिल्म का नाम पगला कहीं का, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1970 में। और अब एक और संदेश देता ये गीत।

नौशाद का संगीतबद्ध किया ये गीत शकील बदायूनी की लिखी रचना, फिल्म का नाम अनोखी अदा, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1948 में, मुकेश की आवाज। और अब आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये गीत।

लता मंगेशकर, मुकेश की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल, फिल्म का नाम शोर, रिलीज वर्ष 1972।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: പുത്തലത്ത് കണ്ണാശുപത്രി ആർട്ട് കഫെ സമർപ്പിക്കുന്നത് പുത്തലത്ത് കണ്ണാശുപത്രി.
4: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനും വിളിക്കൂ 7994385496 0495 274446.
5: ആർട്ട് കഫേയിൽ മാജിക് മഷ്റൂംസ് എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനം കേൾക്കാം. വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ഖദീജ നാദിർഷായും പാടിയത്.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रिय गीतम,
4: പ്രിയ ഗീതമാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേൾക്കാം അപ്പു എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനം എം ജി ശ്രീകുമാർ പാടിയത്. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ രചന, പി സുന്ദരരാജന്റെ സംഗീതം. ഈ ഗാനം പ്രിയഗീതത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വടകര പള്ളിയത്ത് നിന്നും രാജൻ നന്ദനം.

0: जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए शुरू करते हैं सफर गीत मेरे मनमीत। साथ हूं आज मैं आपके माधुरी। गीत मेरे मनमीत में सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत, वो भी बिना रुके।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर जिसे आप सुन रहे हैं वो है गीत मेरे मनमीत का, जिसमें हम लेकर आपके लिए आते हैं गोल्डन एरा के गोल्डन गीतों को, वो भी बिना रुके।

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं समाप्त होता है और दीजिए माधुरी को विदा। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को

0: पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों के अनुसार आज सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे वे, जहां सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और ये सफर है निशिगंधा का। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी कर कुछ रही तो ये नौजवानी फिर कहां। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर और इन पंक्तियों में बहुत कुछ छुपा है। इन पंक्तियों ने हमेशा ही मुझे आवाज दी, हिम्मत दी, उठकर चल पड़ने को साहस दिया। कुछ तो था इन पंक्तियों में जिसने हमेशा मुझे जगाया है। आज सोचा कि इन पंक्तियों के मतलब को आपसे भी साझा करूं निशिगंधा के बहाने।

जी हाँ दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। इसे छोटे छोटे दायरों में जीने की बजाय खुलकर जीने का नाम ही तो जिंदगानी है। सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ये पंक्ति मात्र नहीं है बल्कि जीवन का दर्शन है। ये हमें आमंत्रित करती हैं कि

दुनिया की सैर करो, उसके रंग रूप, संस्कृतियों को, स्वादों को, अनुभवों को अपना लो। जब तक सांस है तब तक जियो, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के जियो, बिना किसी पछतावे के जियो, क्योंकि ये जिंदगी फिर नहीं मिलेगी। जी हाँ, फिर कहाँ मिलेगी ऐसी जिंदगानी।

देखिए ना, आज का हर इंसान बहुत से नियमों से, अपेक्षाओं से और भय के पिंजरे में कैद है। समाज कहता है ऐसा करो, वैसा मत करो, फिर धर्म कहता कुछ और ही है, परिवार कहता है स्थिर हो जाओ, बस जाओ, लेकिन गाफिल जिंदगानी बंधनों से मुक्ति का नाम है।

इसका मतलब संकीर्णता से मुक्ति है। ये कहती है कि दुनिया का हर कोना अद्भुत है। पहाड़, समुद्र, जंगल, शहर, गांव, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, सब कुछ देखो। दुनिया घूमने का मतलब केवल पर्यटन नहीं है, ये अनुभवों का संग्रह है। जितना आप ज्यादा लोगों को जानेंगे, संस्कृतियों को पहचानेंगे, आपका अनुभव, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। और ज्ञान ही इंसान में समझ को बढ़ाता है, इंसान को असल मायनों में इंसान बनाता है।

यादें छोड़ जाता है और बहुत सारी यादें वो समेट भी लाता है। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है निशिगंधा का। आज हम बात कर रहे हैं उन खास पंक्तियों की जिसमें सचमुच जीवन का दर्शन छिपा है, और वो पंक्तियां हैं सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी अगर कुछ रही तो जवानी फिर कहां। और लोग घूमते हैं देश विदेश न जाने कहां कहां और बटोरते हैं ढेर सारे अनुभव। जब आप इटली के रोम में कोलेसियम के खंडहरों के सामने खड़े होते हैं तो इतिहास जीवंत हो उठता है। जापान के चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठकर साकुरा देखते हैं तो क्षण भंगुरता का सबब मिलता है। जब राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पर सूर्यास्त देखते हैं तो लगता है कि जीवन कितना विशाल है। हर जगह इंसान की कहानी अलग अलग है, फिर भी पता है क्या एक है। एक चीज एक है कि वो एक ही चाहत में घूमता है और वो चाहत है खुशी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है निशिगंधा का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और आज टटोल रहे हैं कुछ शब्दों के अर्थ निशिगंधा के बहाने। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगान।

आखिर कहां। इस लाइन में छुपा है जिंदगी का फलसफा, जिसे ढूंढ रहे हैं हम, जिसे कह रहे हैं हम, जिसे गुनगुना रहे हैं हम और जिसे गा रहे हैं हम।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। सफर है निशे गंधा का और हम बात कर रहे हैं सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। इसी सफर में फिर कहाँ, ये सवाल बहुत गहरा है। मौत के बाद क्या, कोई नहीं जानता। स्वर्ग नर्क की कहानियां तो सिर्फ कहानियां ही हैं, जो कुछ है वो यही है, इसी धरती पर है, इसी वक्त में है। अगर यही नहीं जिया तो फिर कहाँ जाना है, अगर यहां नहीं जिया तो फिर कहीं और जाकर भी क्या मिलने वाला है। कई लोग कहते हैं पैसे नहीं है, समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी कोई भी समय परफेक्ट नहीं आता कि हाँ सब कुछ बढ़िया होगा और फिर हम कहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। समय को अपने लिए परफेक्ट बनाना पड़ता है और इसके लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। ये जो समय बहुत तेजी से भाग रहा है ना, इसे थोड़ा रोक लीजिए अपने लिए।

0: धीरे चल।
1: ये जीवन दर्शन हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ कमाने और खर्च करने वाली मशीन नहीं हैं, हम महसूस करने वाले, अनुभव करने वाले प्राणी हैं। इतनी सुंदर धरती है, हमारी आत्मा को हवा चाहिए, रोशनी चाहिए, नई नई सुगंध चाहिए। जब तक हमारा शरीर साथ दे रहा है तब तक सैर करो। अंत में यही कहना चाहूंगी, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी का मतलब है खुलकर जीना, बेखौफ जीना और प्रेम से जीना। आप अपने अनुभवों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें आकार दे सकते हैं, कोई कहानी कर सकते हैं, कोई कविता या गीत बन सकती है आपका अनुभव, किसी को राह दिखा सकती है, रिपोर्टाज बन सकती है। और ये जो इतना सुंदर चित्रकार है, उसने जो ये चित्रकारी की है हमें अलग अलग अनुभव देने के लिए, हमें जीवन का दर्शन देने के लिए, तो हमें उन चीजों को देखना और समझना चाहिए। इसी के साथ दीजिए माधुरी को निशिगंधा से इजाजत। ये आखिरी गीत निशिगंधा का आप सभी के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल

0: मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से दो दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगी। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान सीएसआईआर और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान एनआईएएस के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। डीजीसीए ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू येस्टरडे कन्फर्ड पद्मा अवार्ड्स टू 66 एमिनेंट पर्सनालिटीज फॉर द ईयर 2026 एट द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन। Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah congratulated all the luminaries and change makers who have

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के इस वक्त हम आपके लिए लेकर आते हैं गीत सुहाने, जिसमें आप सुनते हैं ओल्ड क्लासिक्स। और आज की रात आपके साथ मैं हूं माधुरी।

ये जिंदगी तो ऐसी ही है, किसी के लिए मुश्किल है तो किसी के लिए आसान है। ये गीत सुना आपने फिल्म CID से मोहम्मद रफी और गीता जी के आवाजों में। और अगला गीत आपके लिए ये रहा।

लतार मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म गूंज उठी शहनाई से, संगीत दिया वसंत देसाई ने।

नवरंग फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सभी सुन रहे थे महेंद्र कपूर के आवाज में, संगीत सी रामचंद्र का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

0: भाई किसी का साथ ही ऐसा हो कि मन कर जाए कि दिन और रात बस उसी के साथ रहें, तो क्या बात है। और ये जो बात हुई, ये हुई फिल्म मिस बॉम्बे में, और आवाजें थीं सुमन और मोहम्मद रफी साहब की। हंसराज बहल का संगीत था। और अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं अब, जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।
1: मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती। मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
2: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
2: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे?
2: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
2: सोच लो।
1: सोच लिया।
2: और अगर नहीं कर सके तो?
1: हार मान जाऊंगा।
2: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
2: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
2: मंजूर?
1: मंजूर। काम तो बताइए।
2: जरा सोच तो लूँ। वो देखते हो वो?
1: हाँ।
2: क्या?
1: मुर्गी?
2: हाँ पकड़ लाओ।
1: मुर्गी?
2: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

कुछ गाने होते हैं ना कि जब भी सुनो तो मन जो है रिफ्रेश सा हो जाता है, फ्रेश कर देता है मन को, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे सिंटरफ्रेश की तरह इसकी भी टेस्ट आती है इस गाने की। और ये जो गीत था ये था फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, आवाजें किशोर कुमार और आशा जी की, और संगीत एसटी परमन साहब का।

फिल्म अलबेला से ये गीत सुना आपने चितलकर लता जी और कोरस की आवाज में, संगीत चितलकर रामचंद्रन का।

फिल्म मल्हार से ये गीत आप सुन रहे थे लता और मुकेश की आवाज में। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म बैजू बावरा से लता जी की आवाज में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृहमंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। विज्ञान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ ईवा ओर्तेगा पोइनो के नेतृत्व में वाले उच्चस्तरीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। वहीं खेलों में वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरूषों के फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Raja was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah congratulated all the luminaries and changemakers who have been conferred with Padma Awards by President Draupadi Murmu. In a social media post, Mr. Shah said, Prime Minister Narendra Modi has reoriented Padma Awards as an institution to drive socio-economic progress by honouring the real changemakers, strengthening the society at crossroads. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola Ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials yesterday said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई का ये सफर लेकर मैं माधुरी हूं आज की रात आप सभी के साथ।

तूने खलवत में कभी ये भी तो सोचा होगा, तू न होगा तो मेरे दिल में अंधेरा होगा। आंख में ठहरे समंदर ये पता देते हैं, दिल के सहरा पे कोई अब्र तो बरसा होगा।

दिन को भटकूंगा तेरी प्यास का सहरा बनकर, रात खो जाऊंगा तुझ में तेरा साया बनकर। मैं कि मंजिल था कभी तेरे एक ख्वाब की, अब रह गया हूं तेरा एक भूलता रास्ता बनकर। उसने अच्छा किया ठुकरा दिया मुझको, वरना खुद उसे जीना ही पड़ता मेरे जैसा बनकर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इस सफर के गीतों गजल आपको पसंद आ रहे होंगे और आपकी रात भी हमारी रात की तरह अच्छी गुजर रही होगी। और कई बार बातों ही बातों में ऐसी बातें हो जाती हैं कि लगता है कि खामोशियों को सुनना शुरू कर दें। कुछ हिस्सा ही है अगला गीत, कुछ ना कहो।

खुशबुएं लहरें समंदर पे कोई बात होगी, प्यार में आगे बढ़ेंगे तो प्यार की कोई किताब होगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृहमंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और

पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ ईवा ओर्तेगा पाइनो के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सामग्री, डिजिटल हेल्थ और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री और नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष नेफ्यू रियो ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के एनपीएफ में विलय को निर्वाचन आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। कोहिमा में पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रियो ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस महीने की 4 तारीख को विलय को औपचारिक मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात के 3:11 और 15 सेकंड हुए हैं। सुस्वागतम, आप सभी का स्वागत करते हुए हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यादें भी क्या हैं और कब बिन बुलाए दस्तक दे देती हैं, और हमें भी जब आपकी याद आती है हम आपसे मिलने पहुंच जाते हैं। ना जाने कौन सी खूबी है तुझ में, जो तू दूर होकर भी दिल के सबसे करीब है। ना जाने कौन सी खूबी है तुझ में, जो तू दूर होकर भी दिल के सबसे करीब है। और दिल कहता है मत तड़पाओ उन्हें, और यादें कहती हैं बस उन्हीं के हो जाओ। तेरी यादों का समंदर कुछ ऐसा है कि हर लहर दिल को छूकर गुजर जाती है। कितनी अजीब है ये दिल की कश्मकश भी, यादें तो उनकी आती हैं और सांसें हमारी रुक जाती हैं।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म पतिता से ये गीत आपने अभी सुना। नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं, नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं, हम घबरा के अपनी आंखें झुका लेते हैं। कैसे मिलाएं हम उन आंखों से आंखें, सुना है वो आंखों से अपना बना लेते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जाने अनजाने से अभी आपने गीत सुना। वादा नहीं कोई ना ही कोई कसम, वादा नहीं कोई ना ही कोई कसम, फिर भी तुझसे प्यार है और तेरा इंतजार है। तेरे चेहरे की उदासी दे रही है गवाही, मुझसे जुदा होकर भी तू भी बेकरार है। आइए सुनते हैं टैक्सी चोर फिल्म से किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं कारवां फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

अक्सर तन्हा चांदनी रातों में, अक्सर तन्हा चांदनी रातों में मन की खामोशी है और दिल कुछ कहना चाहता है। आइए सुनते हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आवारा फिल्म से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनल।

लो और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़क
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म तीन देवियां से ये गीत आपने सुना। इस बारिश पर ना जाओ मेरी आंखों में देखो, इस बारिश पर ना जाओ मेरी आंखों में देखो, दिल के दरिया में कहीं एक

भोसले की आवाज में फिल्म तीन देवियां से ये गीत आपने सुना। इस बारिश पर ना जाओ मेरी आंखों में देखो, इस बारिश पर ना जाओ मेरी आंखों में देखो, दिल के दरिया में कहीं एक तूफान उठा होगा। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म 9 2 11 से ये गीत।

रंगीला रथ से यह भी गीत आप सुन रहे हैं और इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधनों निर्देशनों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक साधन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल है। आरबीआई ने कहा है कि यह कदम सहकारी बैंकों में बेहतर प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने

0: के लिए उठाया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। डीजीसीए ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक तापमान में शामिल रहा। और खेलों में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष सट्टी मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ अपने अभियान की शुरूआत करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in the cabins of the Gulmarg gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials yesterday said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of the NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Omar Abdullah announced a probe into the malfunction and said action would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI, yesterday, Ms. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, that is, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
2: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs.

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर हमारा मन खुश है तो हमें सब जगह अच्छा ही नजर आता है। जमी, आसमां, सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, अपने मन मस्तिष्क को हमेशा शांत रखिए, जिससे आपका तन भी स्वस्थ रहेगा और आप भी।

अमित कुमार की आवाज में फिल्म तेरी कसम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, दिल में जो भी बातें हैं वो किसी अपने के साथ जरूर शेयर कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाता है।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म जोशीला से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, बेकार की दुख चिंता में अपना समय मत गवाइए, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहता है। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा से ये गीत।

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं खानदान फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

जिंदगी का सफर बहुत सुहाना है दोस्तों, बस ये आपको देखना है कि इसे जीना किस अंदाज में है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जिगरी दोस्त से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, घबराना नहीं है, क्योंकि जिंदगी का असूल है तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म रेशमी रुमाल से ये गीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म गीत गंगा से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तों को बदल देते हैं। आइए सुनते हैं वक्त फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म गीत गंगा से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तों को बदल देते हैं। आइए सुनते हैं वक्त फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति गंगटोक में आज शाम नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। राष्ट्रपति कल नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे आज राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज सुबह वे बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक

सुबह के 5:11 और 13 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह की बेला है और ऐसे में ध्यान को प्रभु सिमरन में लगाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा भजन जो गाया है तनुश्री कश्यप शर्मा ने।

दोस्तों, गीत गाते गुनगुनाते जिंदगी का ये सफ़र बिताते चलो, हंसते मुस्कुराते ये प्यारे से पलों से अपने को महकाते चलो।

जसपाल सिंह और साथियों की आवाज़ में फिल्म गीत गाता चल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, ज़िंदगी में आए हैं तो बिछड़े हुओं को मिलाते चलो और मंजिल की धुन में झूमते गाते चलो, बिल्कुल इस गीत की तरह। अनोखी अदा फिल्म से आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म घर संसार से।

0: दोस्तों, हम सभी एक मुसाफिर की तरह ही यहाँ पर हैं। बस अपने अच्छे कर्म करते रहिए और चलते रहिए।
1: मुसाफिर।
0: किशोर कुमार की आवाज़ में परिचय फिल्म से सुनते हैं ये गीत।